0: और आइए आप सुने लता मंगेशकर की आवाज में तुलसीदास की पारंपरिक भक्ति रचना।
1: ज्ञान के बिना कर्म क्लेशमय हो जाता है और कर्म के बिना ज्ञान बांझ रह जाता है। भक्ति का उदय होते ही ज्ञान और कर्म अपने आप श्रेष्ठ हो जाते हैं, पर इस भक्ति का उदय हो कैसे? भजमन श्री रामचंद्र।

0: अब हम आपको सुनवाते हैं गोपाल शर्मा और सुखदेव कुमार की आवाज में तुलसीदास की रचना मेरो भलो कियो राम।
1: ज्ञान, कर्म और भक्ति, जब इन तीनों का संगम होता है तब जीव का ब्रह्म राम से मिलन होता है, उसमें वो एकाकार हो जाता है।

हर पल हर दिन भारतीय संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का डीटीएच चैनल रागम। आप सुन रहे थे भक्ति संगीत। यह आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी।

0: सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए अभी प्रस्तुत है राग जौनपुरी पर ख्याल गायन। कलाकार हैं चंदना भट्टाचार्य। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं समीर नंदी और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं सनातन गोस्वामी। तो लीजिए प्रस्तुत है राग जौनपुरी पर ख्याल गायन। कलाकार हैं चंदना भट्टाचार्य।
1: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This morning we present a Hindustani vocal recital followed by a Hindustani instrumental recital. Listen first to a khayal in the rag Jaunpuri. Our artist is Chandana Bhattacharya. Accompanying our artist on the tabla is Samir Nandi and on the harmonium is Sanatan Goswami. Listen now to a khayal in the rag Jaunpuri, our artist Chandana Bhattacharya.

0: अभी आप राग जौनपुरी पर ख्याल गायन सुन रहे थे। कलाकार थे चंद्रा भट्टाचार्य। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे समीर नंदी और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे सनातन गोस्वामी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए अभी प्रस्तुत है राग ललित पर सितार वादन। कलाकार हैं काजल चट्टोपाध्याय। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तरुण रॉय। तो लीजिए प्रस्तुत है राग ललित पर सितार वादन। कलाकार हैं काजल चट्टोपाध्याय।
1: यू वर लिसनिंग टू अ ख्याल इन द राग जौनपुरी। आवर आर्टिस्ट वॉज चंदना भट्टाचार्य। अकंपनिंग आवर आर्टिस्ट ऑन द तबला वॉज समीर नंदी एंड ऑन द हारमोनियम वॉज सनातन गोस्वामी। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। कंटिन्यूइंग द कॉन्सर्ट वी नाउ प्रेजेंट अ सितार रिसाइटल। Listen to a sitar recital in the rag Lalit. Our artist is Kajol Chattopadhyay. Accompanying our artist on the tabla is Tarun Roy. Listen now to the sitar in the rag Lalit. Our artist Kajol Chattopadhyay.

0: अभी आप राग ललित पर काजल चट्टोपाध्याय से सितार वादन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तरुण रॉय। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a sitar recital in the rag Lalit. Our artist was Kajol Chattopadhyay. Accompanying our artist on the tabla was Tarun Roy. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है पंडित जसराज का गायन. लीजिए सुनिए राग भीम पलास. विलंबित बंदिश एक ताल में निध है. बोल हैं तन दीनो मन दीनो. द्रुत बंदिश तीन ताल में निबद्ध है. बोल हैं तुम मोरी मोतिन लर क्यों तोरी. इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी आर प्रेजेंटिंग वोकल रिसाइटल बाय पंडित जसराज. लिसन राग भीम पलास. विलंबित बंश सेट टू एक ताल. बोल तन दीनो मन दीनो. द्रुत बंदिश सेट टू तीन ताल. बोल तुम मोरी मुतिन लर क्यों तोरी.

0: यह है रागम DTHL, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
1: ये था राग भीमपलास। तबले पर संगत कर रहे थे केदार पंडित और वायलिन पर विदुषी कलारमनाथ। कार्यक्रम को जारी रखते हुए पंडित जसराज प्रस्तुत कर रहे हैं राग मियाँ की मल्हार। विलंबित बंदिश एक ताल में निबद्ध है। बोल हैं बाबा तोपे बरसत करीम रहीम। द्रुत बंदिश तीन ताल में निबद्ध है। बोल हैं घन गर्जत बरसत बूंद बूंद।
0: दिस इज रागम DTH चैनल, एनीटाइम इंडियन म्यूजिक।
1: दैट वॉज राग भीमपलास। अकंपनींग हिम ऑन तबला केदार।

0: मैं विजय शंकर मिश्र आप सभी संगीत रसिकों का हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूँ। हम सभी कलाकार की कला का रसास्वादन करते हैं और मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा भी। लेकिन क्या कभी हमने और आपने यह सोचा है, गान गायक का नहीं व्यापार उसकी विकलता है, राग वीणा की नहीं झनकार उसकी विकलता है, भावनाओं के मधुर आधार सांसों से विनिर्मित गीत कवि उर का नहीं उपहार उसकी विकलता है। तभी तो कभी कभी गायक भी पीछे मुड़कर पूछ बैठता है, जिन गीतों पे तुम मोहित हो क्या वे गान समझ पाए हो। मित्रों, संगीतकार और उनकी कला को समझने और समझाने का एक विनम्र प्रयास है महफिल, जिसमें आज हम बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कला नेत्री विदुषी रीता गांगुली जी के साथ उपस्थित हैं। रीता जी ने ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी और गजल सीखा, लोक संगीत सीखा, अभिनय किया, किताबें लिखी, माइम एवं मूवमेंट का प्रशिक्षण दिया, संगीत विषयक शोध कार्य किया, देश विदेश में संगीत विषयक आयोजन किया और हर क्षेत्र में अपनी अप्रतिम प्रतिभा का छाप छोड़ा। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे महफिल को गरिमा प्रदान करने के लिए विदुषी रीता गांगुली जी आज हमारे साथ उपस्थित हैं और हम इन पंक्तियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। चमन तुमसे इबारत हैं, बहारें तुमसे जिंदा हैं, तुम्हारे सामने फूलों से मुरझाया नहीं जाता, तुम्हारे सामने फूलों से मुरझाया नहीं जाता। रीता जी, बहुत बहुत नमस्कार और आपका स्वागत।
1: मेरा भी नमस्कार स्वीकार करिए। खासकर ये इस महफिल को सुनने वाले सबको मैं बधाई भी देती हूँ कि टेलीविजन छोड़कर ये सुन रहे हैं, अपने में ही बहुत बड़ी बात है कि सुनने की बात ही अलग है, क्योंकि देखना है तो सिर्फ उनको देखना है जो कि दिखाई नहीं पड़ते, तो सुनना ही बेहतर है ताकि कुछ हमारे पल्ले भी पड़ता है।
0: शुरू से ही शुरू करते हैं। लखनऊ के एक संभ्रांत कला अनुरागी परिवार में जन्मी रीता गांगुली संगीत के प्रति कैसे आकृष्ट हुई? सर्वप्रथम अपनी संगीत शिक्षा के विषय में आप कुछ बताएं।
1: मेरी जो पैदाइश लखनऊ की है उसमें खास बात थी कि एक्सीडेंटली मैं अचानक रातों रात 3.5 साल की थी कि सारी यूपी की बेबी रीता बन गई। सरोजिनी नायडू जी तब हमारे गवर्नर थे, फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी। उनको पता नहीं क्यों मैं बहुत भाग गई और जहाँ भी जाती थी साथ ले जाती थी, और मैं क्या करती थी भगवान जाने। लेकिन ये पता है कि पहला मैंने शुरू पहले किया था बच्चे के हिसाब से नाचना शुरू किया था, और आपको हैरत होगी कि पहली नृत्य कार्यक्रम जो अनचाहे मेरे माँ बाप नहीं चाहते थे, मैं खुद ब खुद स्टेज में जाके नाचने लगी और वो हटा नहीं पाया हमको। आप सोच सकते हैं हमारे पीछे संगत कौन कर रहे थे। मैहर बैंड उस दिन बजा रहे थे और सामने छोटी सी जगह खाली थी और बाबा अलाउद्दीन पीछे करके खड़े थे और कंडक्ट कर रहे थे। उसमें रविशंकर जी, अली अकबर जी, पन्नालाल घोष ये सब थे और वो कंडक्ट हो रहा था। मैं जो जिसने हमको हाथ पकड़ रखा था मैं उसका हाथ छुड़वा के स्टेज में जाके जब तक बैंड चला तब तक नाची, और तब तक हमारे माँ बाप विंग में बहुत आंखें दिखाने लगे, बहुत उंगलियां दिखाने लगे, चलो फौरन निकलो, लेकिन मैं निकली नहीं। दूसरे दिन जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा था वो भी बहुत उन्होंने गाली गलौज किया मेरे माँ से कि आप बच्चे क्यों पैदा करते हैं और लेके क्यों आते हैं साथ, प्रोग्राम में लाना नहीं चाहिए आपको, सारा हमारा काम बिगड़ गया। और दूसरे दिन फ्रंट पेज में मेरी तस्वीर थी और ये भी आया, बधाई भी उनको मिली कि क्या एक छोटी सी लड़की से उन्होंने चमत्कार पैदा किया।
0: क्या बात है।
1: तो ये मेरी शुरुआत थी। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा हमारे घर के बच्चे गाना बजाना नहीं करते, अब बड़ी हो जाओगी तो बंद करना है। तो मैं तो बहुत चाहती थी थोड़ा सा गाऊं कुछ नाचूं, लेकिन बहुत सख्त थे उन्होंने, बहुत प्यार करते थे, हमें बढ़ावा देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा हमारे घर के बच्चियाँ पढ़ाई लिखाई करती, तुम विदेश चली जाओ, बड़ी हो जाओ, अच्छा करो, जिस दिन सेकंड आओगी उसके बाद, लेकिन और ये सब हमारे घर में ये सब नहीं सुनना चाहते। तो सेकंड नहीं आई मैं, हमारे साथ शर्त ये थी कि अगर जिस दिन आप

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. आज इस कार्यक्रम में प्रस्तुत है विदुषी रीता गांगुली से विजय शंकर मिश्रा की भेंट वार्ता.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present for you an interview with Vidushi Rita Ganguly. Interviewing her is Vijay Shankar Mishra.
3: Namaskar.

0: क्लास में सेकेंड आ जाओगी उस दिन आप खुद ब खुद छोड़ दीजिएगा, ठीक है, शर्त मंजूर? मैंने कहा जी मंजूर। तो उसके बाद पढ़ाई मेरी और बढ़ गई, इसमें कोई दो राय नहीं, गाना वाना तो नहीं गा सकती हूँ, ये तो मछली का काम है तैरना, और प्रोफेशनल गाने बजाने वाले जो हैं उनका है काम गाना बजाना, मैं तो सिर्फ इबादत की तौर से करती हूँ और मुझ सर झुका के करती हूँ कि ये जितना भी आ गया गुरुओं की कृपा से। लेकिन पढ़ाई में मैं कभी सेकंड नहीं आए उसके बाद। अभी हमें एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, मुझे नहीं पता था कि मैं गा भी लेती थी, क्योंकि उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री मेरे ऊपर बनाई, उसमें मैंने देखा कि 3.5 साल की थी, मुझे एक 5 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। अच्छा। तो अचानक ख्याल आ गया, हाँ ये बात सच है कि हम 5 रुपए उस जमाने में बहुत होते थे, तो पूरे घर वालों को लेके, लखनऊ में ये सब क्वालिटी वगैरह नहीं था, तो हम मंगलोलिया करके एक जगह थी, वहाँ पर जाके पूरे परिवार को हमने आइसक्रीम खिलाया था, वो आनंद आज भी मुझे याद है। तो बहरहाल इस तरह से चलती रही। उसके बाद मैं कोई 11 साल की थी, तब मैंने अपना स्कूल ख़त्म कर लिया था इन्हें सीनियर कैम्ब्रिज, उसमें भी ईश्वर की कृपा से मैं प्रथम आई, तो बाबा ने फिर वो रोक ही नहीं सके। यही वजह थी कि मैं शांति निकेतन चली गई, क्योंकि और कहीं मुझे दाखला नहीं मिला, मैं छोटी थी, वो कहते नहीं ये तो स्कूल में होना चाहिए, हम कॉलेज में दाखला नहीं लेंगे। तो बहरहाल मैं वहाँ मिली, शर्त ये था कि गाना सीखूंगी, नाच सीखूंगी और पढ़ाई भी करूंगी। इसी तरह से मेरी शुरुआत हुई बाकायदा तालीम जिसे कहते हैं। तो इससे पहले हालांकि मैं सच पूछिए तो मेरे पिताजी को शौक था गाने का, वो चाहते थे, ये बंगालियों में होता है, बंगाली और कायस्थों में ये होता है कि लड़कियों को गाना बजाना ज़रूर सिखाया जाता है, तो हमको भी सिखाया गया, गोपेश्वर बाबू जी को लाया गया। ये हैं गौहर बानी के बिष्टुपुर घराने के बिल्कुल जिसे कहते हैं खलीफा, बहुत बुजुर्ग थे और उन पर मुझे बहुत गुस्सा आता था, हम तुम रे क्यों कर रहे हो, सीधा गाना सिखाओ, रे नहीं करना है। तो बाबा अगर होते तो बहुत नाराज होते थे, बेटा इस तरह से बात करते, तो कहते नहीं कहना ही, इसकी आवाज़ अच्छी है, ये कर लेगी, ठहरो मैं कुछ हल्का चीज़ सिखाता हूँ। तो उन्होंने पहले हमको जो सिखाया था
1: जी,
0: वो एक बिहाग में
1: जी,
0: क्योंकि ये एक घराना सिलसिला है जो कि ये तो पूरी भक्ति कल्ट की देन है ध्रुपद गाय की
1: जी,
0: और वो लोग खासकर ये संप्रदाय बल्लभ संप्रदाय जो है ये लोग कृष्ण भक्त थे
1: जी।
0: तो जाके बंगाल में बस गए नवद्वीप के पास और वहीं से ये यहाँ पे ये लोग सीखे। वो एक उन्होंने हमको सिखाया था, थोड़ा सा पहला लाइन बोल
1: जी, बिल्कुल

0: अब ये उन्होंने सिखाया तो हमने कहा कि इसको इसका ये रोता क्यों है, ये रोता क्यों है, किसका आंख में क्यों नैन भर आ रहे हैं, क्यों इसका नैन भर आ रहा है, मुझे ये गाना नहीं सीखना है। तो बोले ये मियाँ तानसेन की रचना है। तो बोले मियाँ तानसेन इतना खराब रचना क्यों करे, हर वक्त रोता क्यों है लोग। तो ये मेरी आर्ग्यूमेंट थी
1: जी, जी।
0: ये मेरे बाद में एक बार गोपेश्वर जी से फिर मुलाकात हुई जब मैं बड़ी हुई, शांति निकेतन में वो विजिटिंग प्रोफेसर हो के आए थे। तो उन्होंने कहा मेटा क्या विषय का बोई तो हमारा छात्री सो ही, और जितने दिन रहे सिर्फ मुझे ही सिखाया उन्होंने। और इसमें शिकायत भी हुई थी वाइस चांसलर के पास जाके, आपने ये बुला लिया एक विजिटिंग प्रोफेसर, वो सिर्फ एक ही बच्ची को सिखाते हैं और किसी को, मतलब मेरी मर्जी है मैं किसको सिखाऊं, हम चले जाते हैं। तो इस तरह से मेरी संगीत की शुरुआत हुई। और उस वक्त एक अद्भुत गायक थे ग्वालियर घराने के, वी वाजलवरकर
1: जी,
0: जो कि शांति निकेतन में अध्यक्ष थे संगीत के। उसके बाद इनके नीचे रविंद्रलाल रॉय जो कि मालविका कानन की जी के पिताजी थे,
1: अच्छा।
0: ये भी सिखाने आए थे। तो फिर ख्याल की तालीम शुरू हो गई। और ये ख्याल की तालीम जो उस्ताद जी जिसे हम कहते थे वाजलवरकर जी को, उनकी

0: आवाज इतनी खूबसूरत थी हम बोल नहीं सकते। ये गाना सुनना ज्यादा अच्छा लगता था और अपना गाना आज भी नहीं अच्छा लगता, तब भी नहीं लगता था, लेकिन कोई बात नहीं, एक चीज पसंद है। और मेरी किस्मत बहुत अच्छी रही कि लोगों को एक गुरु नहीं मिलता, तो हमारे किस्मत में कोई 8 महान गुरु हुए जो कि अपने क्षेत्र में आखिरी थे। और ये मेरी सबसे खुशकिस्मती है कि मैं कोई प्रोफेशनल गाने बजाने की घर की नहीं हूँ कि मुझे खुद ब खुद आ जाए, लेकिन उन्होंने बहुत प्रिय शिष्य करके मुझे ऐलान किया। बस यही मेरी जिंदगी की हासिल है।
1: क्या बात है। आपने ध्रुपद सीखा, ख्याल सीखा, ठुमरी दादरा सीखा, बेगम अख्तर जी से गजल सीखा, अल्लाजी राईबाई जी से राजस्थानी लोक संगीत भी सीखा। वह कौन सी बेचैनी है जो आपको इतने गुरुओं के पास लेती गई और आप अलग अलग विधाएं सीखती गई?
0: देखिए, ये अथाह समुद्र है
1: जी,
0: ये तो आप कहीं पहुंच ही नहीं सकते हैं। लेकिन सही माने में जो मेरा एक्सीडेंटल था, आप लोग नहीं जानते हैं, मेरे उस्ताद जो थे वो पंडित शंभू महाराज
1: जी,
0: वो नर्तक थे बहुत मशहूर, बिंदादीन महाराज के घराने के, अच्छन महाराज के छोटे भाई। वो इतना अच्छा गाते थे, कई लोगों को नहीं पता कि वो तो ऐसे गाते थे कि भीमसेन जोशी जी उनको उनसे पहली तालीम की उनके पास थी लखनऊ में, वो गए थे और बाकायदा उन्होंने सीखा। ये मैं जानती हूँ इसलिए कि बाद में मैं जब महाराज जी से सीखने लगी तो उन्होंने, वो आते थे और शाम को महाराज जी तालीम वाले यकीन नहीं रखते थे, शाम को बैठते थे, उन लोगों का खूब दोनों का चलता था दौर और वो गाते थे। आप सोचिए उनका आलम क्या था कि जब छोटा ख्याल में आते थे, वो स्पीड जो होता था, भीमसेन जी उसके पैर पकड़ लेते, तब वो उरूज में गा रहे कि महाराज जी थोड़ा लय कम कर दें ताकि मैं भी तान गा लूं। सोचिए उनकी क्या तैयारी हुई। इनके गाने में बाबा नसीर करके बहुत मशहूर एक गायक उत्तर प्रदेश में हुए
1: जी,
0: उनसे उनकी तालीम हुई, उनसे बहुत असर उनके गाने में हुआ। एक वो जो पुकार है, काकू भेद जिसके कहते हैं, वो अद्भुत उनका पुकार था। नृत्य से किसी को रुलाया जा सकता है वो मेरे महाराज जी कर सकते, नाच के रुलाते थे
1: जी।
0: और गा के आनंद देते थे। ऐसे कलाकार बहुत मुश्किल से मिलता है, तो वो कई बार हमें अलग अलग चीजें सिखाते थे। यहीं पर उनके साथ तालीम मिल रही

ये गा रहे थे, अचानक दरवाजा खुला और एक मोहतरमा अंदर आई। महाराज जी से कहा, ये कहाँ से पकड़ ले हो, हाँ इसका नाम कहा हो, ये गात है बहुत अच्छा गात है। अरे हमका दे दिया। तो बहुत नाराज हुए, काहे काहे देव तो का हमारे शागिर्द हो तुम। नहीं नहीं अच्छा सुनो बेटा, ऐसा है तुम गाना सीखोगे हमसे? तो मैंने कहा जी मुझे गाना सीखने की कोई इच्छा नहीं है, और जो सीखना है मैं मेरे उस्ताद सिखा रहे। मुझे इसमें बहुत गुस्सा है भाई, हमारे यहाँ लखनऊ में रसूलन भाई जी हमारे पिताजी के राखी बांधती थी, उससे ये फायदा होता था कि वो लखनऊ बनारस में तब कोई रेडियो स्टेशन नहीं था, तो वो बनारस से आती थी, होटल में रहती थी और जाती थी, उसका सारा देखभाल मेरे पिताजी करते थे, तो उनको तो बहुत सुन रखा था। लेकिन सिद्धेश्वरी जी का नाम हमें नहीं सुना ही नहीं था, जबकि वो इतनी मशहूर थी और पूरे महाराष्ट्र में उछाई हुई थी उन दिनों। उन्होंने हमको कहा कि अच्छा बेटा

0: ऐसा है कि तुम्हारी उस्ताद जो भी गाएंगे, जो उनकी जिस्म से अदा होती है वो ये मेरे गले से अदा होगी। मंजूर, तो मुझे समझ भी नहीं आ रही क्या बोल रहे हैं वो
1: जी।
0: उतनी अकल भी नहीं थी, छोटी भी थी बहुत। तो उन्होंने वही शुरू किया मतलब।

और महाराज जी भाव बोलने लगे और गाने लगे। कोई 15 मिनट ऐसा उन्होंने समा बांधा कि बता नहीं सकते। अचानक कोई 15-20 मिनट के बाद हमें एक आवाज सुनाई पड़ी।

0: ये 45 मिनट तक चलता रहा। ये रो रहे हैं गाते हुए, वो रो रही हैं गाते हुए, दोनों को देख के सुन के मैं भी जार जार रो रही हूँ, जैसे कि साक्षात सरस्वती उतर आई हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में बहुतों का गाना सुना, लेकिन वो सवेरे मैं भूल नहीं सकती। रोटे खड़े हो जाते आज भी बोलते वक्त,
1: मेरे खड़े हो गए।
0: अचानक सिद्धेश्वरी जी बजा रहे थे, मौजी राम जी थे तबले पे, वो अचानक उन्होंने कहा कि बेटा मैं पास हो गई। सिद्धेश्वरी जी मुझे पूछ रही, तो महाराज जी इतने बड़े से गाली बोल के, तो कहाँ है तू, है किसकी बेटी है, क्या मतलब, क्या ये पता भी है कौन तेरे से बात कर रही है, हा? तो ये हिम्मत की तेरे तू पास कराएगी इनको। हमने कहा कि कुछ बोला ही नहीं था, तो कहा ऐसे मत बोलो, अरे टेम्पटम बोली बोला था ये कर जायदा कुछ कही वो तो नहीं मानी है, छोड़ दिया तू तो समू छोड़ दिया एक कर छोड़ दिया। बेटा मैं पास हो गई, जल्दी से अपना वो खोला, बैग खोला और 11 रुपए पान छा लिया, तो खाते ही थे, साबुत सुपारी भी था वो, और पान दे के कहा कि जल्दी मेरे पैर के पास दो दो, मैं गंडा बांध देती हूँ। तो इसका मन बिगड़ गई है, ये टेम्पटम बोली बोला था, बहुत जोर से बोला था मुझे पता है, टेम्पटम बोली मतलब अंग्रेजी बोला जी, जी, जी। फिर उसने कहा इंदिरा के खबर दे दिया हमका मिर्गल शागिर्द, अरे मूर्ति तोड़ के कहीं मूर्ति बना था, ये कच्चा मिट्टी है मैं बना दे। That's what she said. वो जमाना था जब कि सिद्धेश्वरी जी को लाया गया था दिल्ली शहर में, और बड़े बड़े लोग, यहाँ तक कि मालविका कानन, कानन जी, ये अपने माणिक वर्मा, ये लोग सब आए हुए थे इंटरव्यू देने के लिए, उनके पास सीखने के लिए, स्पेशल वजीफा था वो, वहाँ तो सरकार ने अनाउंस किया था कि ताकि बनारस घराना जिंदा रहे और सिद्धेश्वरी जी का स्टाइल जिंदा रहे। इसी तरह से मेरा सिलसिला हुआ शुरू सिद्धेश्वरी जी से सीखने का। उनका ऐसा सिलसिला था कि एक मिनट का टाइम नहीं था, आप नहा भी नहीं सकती थी, नहाते वक्त काय का अरे वक्त बर्बाद करत हो, वो तान लगा पानी चलत है तो तान लगाओ कर साथ, ट्रेन में जाते तो ट्रेन का जो जिक जिक जिक जिक जिक जिक जिक उसके साथ तान, चल चल ऐसे बैठ के वक्त जाया कर, वो चल हमारे पास जाती टाइम ना हो, चल और हमको गाना पड़ता था, 24 घंटे का सिलसिला चलता था। इतना प्यार उन्होंने दिया मैं बता नहीं सकती हूँ।

0: और वो थी भी बहुत अच्छी औरत। उनके पास जो भी जब पैसा होता था, महारानी जैसा होती थी और सबको दे दुला देती थी। और ये बात भी सच है, उनके पास कई बार पैसे नहीं होते थे, फिर भी वो देसी घी मंगा के मेरे लिए छीमी की सब्जी बनाती थी। छीमी मतलब मटर, मटर को थोड़ा सा उबाल के उसमें छोंक के हमारे लिए, ताकि मुझे खुराक ठीक मिले। दूध का गिलास पिलाना, बादाम खिलाना, घी पिलाना, ये सब वो करती थी सवेरे रियाज के वक्त। भले ही उनके अपने पास पैसा नहीं होता था, तो भी वो कभी भी ऐसी उस्ताद बहुत मुश्किल से मिलते हैं जो इतना प्यार करके उन अपने बच्चों को सिखाती हैं। हमें अभी भी याद है कि उनकी बेटी, दोनों बेटियाँ ही बहुत, छोटी बेटी तो बाद में गाने लगी, सविता देवी, पहले तो सितार बजाती थी, लेकिन शांता दी बहुत अच्छा गाती थी, लेकिन उनकी शागिर्द नहीं थी। इन लोगों ने, दोनों ने ही उनसे डगंडा नहीं बांधा था। तो वो उन्होंने कहा था कि बेटा, बीमार थी, उनको फालिज हो गया था, तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरे मुखाग्नि ये करेगी रीता, इसमें अच्छा तुम लोग कोताही मत बरतना। ये अजीब बात है कि तुम लोग तो हमारे कोख से पैदा हुए हो, ये मेरी उपज से पैदा हुई है। बहुत प्यार करती थी, और ये बात सच है कि वो जली नहीं जब तक मैं गई, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियाँ औरतें नहीं जाती
1: जी, जी।
0: तो उनकी तो दो बेटियाँ थीं और उनके नवासे भी थे, वो सब कर लिए। फिर हमको फ़ोन आया, जल्दी से आ जा, हम लोग आधा घंटा 45 मिनट हो गया, जब वो जल नहीं रही हैं। तो दीदी बताई कि रीता को बुलाओ।
1: अच्छा,
0: शांता जी भी है, बहुत अच्छा गाती थी और बहुत ही नेक, दोनों लड़कियां उनकी बहुत अच्छी थी इसमें कोई, और शांता, सविता जी तो बहुत ही अच्छा गाती हैं। लेकिन ये इनकी अपने उस्ताद की भी कितना भी महिमा आप बोले बखान करें, काफ़ी नहीं। फिर वो मुझे ले गए इधर उधर की ख्याल फिर अच्छी तरह से सीखें, थोड़ी बहुत सीख चुकी थी मैं, तो विशारद वगैरह कर लेते, विशारद शायद करके कोई गवैये नहीं बन सकता है, उनको भी पता था। तो हमको दिलीप चंद्र बेदी के पास ले गए, लेकिन बहुत अच्छे ज़रूर गवैये होंगे, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा लगा। तो क्योंकि हम बिहाग सीख चुके थे गोपेश्वर जी से, उन्होंने बिहाग गाया, कैसे सुख सोए नींदरिया, तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। तो हमने कहा कि नहीं, अम्मा इसे नहीं सीखना हमें, तो बहुत नाराज़ हुई, मुझे नहीं सीखना, आप भेज दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम नहीं सीखेंगे, आप तो गाती इतना अच्छा, ख्याल बहुत अच्छा गाती थी, टप्पा तो बहुत ही अच्छा गाती थी। फिर उनकी तालीम, उन्होंने मेरी तालीम जो हुई वो सारंगी के साथ हुई, मेरी पूरी टप्पे की जो तालीम, पहले ज़माने में लोग पहले टप्पे से शुरू करते थे फिर ठुमरी गाते थे, तो मैंने तो अपने उस्ताद को सारी रात एक ठुमरी एक बोल, आओ आओ नगरिया हमार, गा के सुना है मैंने, वो इतना गाती थी। और वो सारंगी के साथ अभी बहुत मशहूर हो गए, टॉप ग्रेड हैं, सारे अवार्ड्स हिंदुस्तान के मिल चुके हैं, उस्ताद साबरी खान साहब, उन्होंने, उनको भी बुलाते थे और हमारी घर की तालीम के लिए। फिर उनमें महान बात थी कि वो जब सचमुच उन्होंने कहा कि मैं तो इसको एक शर्त से उसको मैं गाऊंगी, कहीं प्रोग्राम था कि मेरी बेटी आधी आधा घंटा गाएगी, तो असल में ये गंडा बदने का जो, ये आपने डब्बा पकड़ा दिया और मिठाई पकड़ा दिया और अपने धागा बांध दिया, वो नहीं है। उस्ताद आपको गंडा बांधेंगे गुणीजनों के सामने, तो आपको गाना पड़ेगा चाहे सारे का मई हो। उसके बाद जब वो सोचते हैं कि वो गाना आपने थोड़ा बहुत सीख लिया, तो वही बाकी 5, 7, 11 गुणीजन आएंगे, उनको बाकायदा नारियल के वो पान का पत्ता, सुपारी और कुछ नज़र करके आप फिर बैठे, तब ये इम्तिहान किसका है, गुरु का है।
1: बिल्कुल,
0: आप सुन लीजिए, इसको कहते हैं सचमुच गंडाबन शागिर्दी। तो उन्होंने किया, बड़े बड़े लोगों को वहाँ, उस वक्त प्राणनाथ जी थे, दिलीप चंद्र बेदी जी थे, यूनुस हुसैन खां साहब थे, उस ज़माने में यूनुस हुसैन खां साहब के वालिद भी जिंदा थे, विलायत हुसैन खां साहब, ये सब के सामने उन्होंने हमें बिठा के ये शंकर लाल प्रोग्राम में, उससे पहले ग्रीन रूम में सबको नज़र करवाया।

0: और सबसे इजाज़त दिलवाया और हमसे गवाया, फिर जाके हम स्टेज में गए। तो ऐसे सच्चे मन के इतने सच्चे उस्ताद मिलना बहुत मुश्किल।
1: दीदी एक बात और उठती है, ये तो सही बात है, ऐसे सच्चे उस्ताद मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक आम धारणा ये भी है कि ऐसे गुरुओं से सीखना भी बड़ा मुश्किल होता है और लोहे के चने चबाने पड़ते हैं ऐसे
0: सही
1: लोगों
0: बात,
1: से सीखने
0: गुरु
1: के लिए।
0: शिक्षा परंपरा में चना और गुड़ दिया जाता है, वो लोहे के चने
1: जी जी,
0: इतना आसान तो नहीं है।
1: और आपने इतने महान लोगों से सीखा, तो कैसे आपने इतने लोगों को साधा, आपके अंदर क्या ऐसा गुण रहा कि सारे गुरु आपसे प्रभावित हुए?
0: ये था, मैं मानती हूँ कि अगर आप रास्ते में चलते हुए किसी को गुरु मान लेते हैं तो बात नहीं बनती, गुरु भी चुना जाता है। हालांकि मेरी किस्मत अच्छी थी, उन लोगों ने मुझे चुना, लेकिन ऐसे गुरु जो उनके 32 गुण होते हैं, उनकी खूबसूरत आंखें होनी चाहिए, कम्युनिकेशन की स्किल होनी चाहिए, पैर साफ होनी चाहिए जिसको आप छुएंगे, भाई 32 गुण हैं गुरु के, लेकिन शिष्य की सिर्फ 2 ही गुण चाहिए, वो है फेथ, विश्वास और सरेंडर, आत्मसमर्पण।
1: क्या बात है।
0: तो ये मैंने बचपन में ही अपने पिताजी से सीखा था, क्योंकि वो बहुत महान लेखक थे और स्वाधीनता सेनानी भी थे। उन्होंने समझाया था, बेटा तुम अगर ये, वो तो बहुत हैरान हो गए कि भाई ये कहाँ गाना सीखने लगी, तो बहुत चाहती। हालांकि मैंने कहा बाबा आप सेकंड तो नहीं आए, हम ग्रेजुएशन में भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए हिस्ट्री ऑनर्स लेके, और सेकंड कभी नहीं है ईश्वर की कृपा से, और ऐसा कोई इंटरव्यू में नहीं गई जहाँ मैं सिलेक्ट नहीं हुई
1: जी।
0: तो बाबा ने कहा कि मेरी तो बोलती बंद, और तुमने करना भी तो जाके तुम, अरे हमने तो बालानंद स्वामी से अपना शिष्यत्व लिया। मेरी दादी जो थी वो बाद में सन्यासी हो गई थी, और वो थी, वो सीधा शारदा माँ यानी रामकृष्ण परमहंस के धर्म पत्नी शारदा माँ की शिष्या थी, वो बहुत बहुत ही उच्च कोटि की खुद साधिका थी। बनारस में केदार घाट में 2 जोड़ा शिव मंदिर है, वो मेरी दादी की बनाई हुई, और एक बंगाली माई की घाट है, वो भी मेरी दादी की, वो आनंदमयी माँ जी की नहीं है, मेरी दादी ने बनाया था, क्योंकि मेरे जो दादा थे वो पहले काले पोस्ट मास्टर जनरल थे। अच्छा। उनका रेंगून से श्रीलंका से अफगानिस्तान इतना बड़ा डोमेन था। तो लेकिन सुनते हैं कि मेरी दादी बहुत अच्छा गाती थी, सुनते हैं मेरे पिताजी कहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ हम लोगों के लिए नहीं है, तुम नहीं कर पाओगी, तुम पढ़ाई लिखाई में अच्छी हो उसमें अपना कॉन्सेंट्रेट करो। उसके बाद सिद्धेश्वरी जी के अप्रूवल से मैं कुछ दिन यूनुस हुसैन खान साहब से सीखी, वो मेरे लिए बहुत अच्छा हासिल था, क्योंकि वो इतने पक्के थे राग में। अब ये तो राग जो सीखे उनसे, ये आगरा अथरौली घराने के लोग जो उनके पास बंदिश खुद बनाते हैं, चाहे किसी घराने के गाने वाले हों, लेकिन गाते हैं बंदिश अमूमन आगरा अथरौली के, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बनाई हुई बंदिशें। बंदिश बनाना इतना आसान चीज़ नहीं, जब तक ना आप प्रकांड विद्वान हो आप बंदिश नहीं बना सकते। तो यूनुस हुसैन खान साहब बहुत अच्छा बंदिश बनाते थे, उनसे कुछ दिन सीखा मैंने। फिर उसके बाद वो चले गए विश्व भारती में पढ़ाने के लिए, उसके बाद मैं पंडित मणि प्रसाद जी से सीखना शुरू किया। लेकिन उससे पहले क्या था, एक दिन मैं अम्मा के साथ गाने गई थी लखनऊ एकेडमी में, उस एकेडमी में अम्मा गा रही थी, मैं पीछे गा रही थी, ये राजन साजन जी के पिताजी
1: हनुमान
0: प्रसाद जी तबले पे सारंगी पे थे, और क्या कहने वो थरकवा साहब तबले पे, ऐसा बहुत आजकल लोग अच्छा बजा रहे हैं, बहुत बधाई है उनको, लेकिन वो बात नहीं, जो थिरकवा तो थिरकवा ही रहे, ऐसे किसी ने ना बजाया, ना बजाया था, ना बजाएगा, क्या अद्भुत उनका, मुलायम मक्खन की तरह आपका सम आता है। सिद्धेश्वरी जी बहुत सख्त थी कि एक सम नहीं निकलेगा, तो कहा तो ख्यालिये बल्ले हो, चल जाते, अरे समी ना ही आता, इसका मतलब ये कोई गाना हो, वो का बेकूफ है जो ताल देते, ताल तो राजा हो भाई। तो हम अभी भी नहीं बैठ सकते, जैसे अभी आपके महफिल में बैठे तो हमारे भाई साहब अपने बाएं तरफ बैठे, तो ये मुमकिन ही नहीं कि तबला हमारे बाएं में बैठे, उसका जगह दाहिने में ही है, वो सबसे ऊंची चीज़ है। वो कहती थी, और बात मैं मानती हूँ, कि बेसुरा खप जाएगा,
1: बेताला नहीं।
0: कि ताली तो पूरी ब्रह्मांड ताल से ही चल रहा है, तो हम लोग को तो समान नहीं पड़ेगा। इसके बाद वो उनमें एक ये सब तमाम चीज़ें वो सिखाती थी, उनका पूरा स्वभाव बिल्कुल गाय जैसा था। फिर उसके बाद मैं जब गाने गई तो ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने मुझे छोड़ दिया
1: जी।
0: वो पुरिया धानिश्री में ख्याल गई, वो मुझे छोड़ दिया, उनका तुम संभालो, विलंबित के बाद द्रुत ख्याल कर, हाँ चलो अब गाते हैं करके हम लोग ठुमरी शुरू हुए।

0: उन्होंने उस दिन गाया था, उसके पाँच दिन बाद किसी मुख्तलिफ निजी कारण के लिए मैं कुछ दिन के लिए गाना छोड़ दिया था
1: जी।
0: मुझे अचानक लगा कि मुझे गाना नहीं गाना, बिल्कुल गाना ही नहीं, तो ये अपना ही कोई मसला था। तो गाना छोड़ रखा था कोई 6 महीने तक, चुपचाप घर में बैठी रहती थी और मैं खुश थी, जो भी कर रही थी, कुछ लिख रही थी, कुछ पढ़ रही थी। अचानक मुझे लगा कि मुझे ये काम नहीं, मैं काय को इसमें झमेला कर रही हूँ, हो गया। तो वो जो गाना गाया था हमने, उस महफिल में शायद बेगम साहब आई हुई थी,
1: बेगम अख्तर जी,
0: जी हाँ जी। तो यहाँ आई, वो यहाँ आके ठहरी हुई थी निरुला में, तो एकेडमी की तरफ से उनको मधु करने के लिए लोग गए थे, तो हम भी साथ हो लिए, बेगम साहब को देख लेंगे। अब बेगम अख्तर की मुरीद कौन नहीं है, सब पसंद करते हैं उनकी आवाज़, उनके गाना, तो हम तो बचपन से छोटे थे तब से सुन रहे हैं। तो हम चले गए, तो अचानक वो दरवाज़ा खोलते ही मुरी, आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ मियाँ, देखो दरिया आवा, इस लड़की के बारे में बोलत रही। तो हाँ हो गया, बैठ बैठो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? तो मैं अपना नाम बोला। क्या करती हो, नाचती हो? जी नहीं। गाना गाती हो? जी नहीं। क्या करती हो तुम? मैं खाना पकाती हूँ। तो बोला अच्छा, अरे माशाल्लाह खाना पका लेती हो, तो गा भी लोगी। जो खाना नहीं पका सकता वो गा नहीं सकता बेटा, तो तुम गाओगी? मैंने कहा जी नहीं, मैं गाने का कोई इरादा नहीं और मैं गा भी नहीं सकती हूँ, कभी गाई नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैंने तो उस ज़माने में मैं ख्याल सीखी हुई थी और धमाके का रियाज था, और हमें सिद्धेश्वरी जी ठुमरी गाती थी और बहुत अच्छा गाती थी, तो मैं अपने को बहुत बड़ी समझने लगी। मैंने कहा कि आप ये गज़लें ही सब गाती रहती हैं, तब ठुमरी पहले गाती थी, आजकल छोड़ दिया आपने? हंसने लगी। बोले भाई गज़ल से जब काम चलता है, हम बेवकूफ़ हैं, बिला वजह मेहनत करें ठुमरी गाने के लिए? ठुमरी को ऐसा गाया जाता है, बहुत मुश्किल काम है। तो अब देखो ना, अब मियाँ वो कौन सा, उनके शौहर साथ थे, वो कौन सा था? तो उन्होंने कहा कि छारी का। हाँ अब देखो, ये छारी काली घटा की फरमाइश आती रही और मुझे भूल ही गई हूँ। तो मैंने कहा वो भूल गई है बेचारी,
1: मैं बता देती हूँ,
0: मैं बता देती हूँ अल्फाज सुन रही कोयल भबरी तू क्यों मल्लार गाए। तो उन्होंने कहा अरे भाई अल्फाज तो कोई बता देता, लेकिन बात ये कि सुर भूल गई हूँ।

0: सुना दिया मैंने
1: जी
0: कि बेगम अख्तर भूल गई है अपना, उसमें कौन सी बड़ी बात है, बेवकूफ की तरह वो भी कैसे हमको जाल में फंसा लिए। बोले तुम तो कह रही थी नहीं गाती हो, तो जब ठीक गा रही हो तो तुम हमारे साथ गाओगी तो हम गाएंगे उस प्रोग्राम में। अब वो प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में जितने भी दुनिया के जितने गालिब के जो उर्दू दा हैं, अरबी फारसी सब लिखे हुए, वो सब बड़े बड़े पंडित आए हुए थे और जाकिर हुसैन साहब उसमें बैठे थे
1: जी,
0: तशरीफ थे रखे हुए थे। और इंदिरा गांधी जी तब मिनिस्टर नहीं थी तो वो आई हुई, वो भी आई हुई थी। तो इतने में क्या हुआ कि हमें, मैं गई बेगम साहब गा रही सिरे सुनने के लिए, अब की बार तो और भी मर्जी है सुनने के सामने से, तो उन्हें बुला लिया चपरासी आके, बोला बेगम साहब को बुला रहे, तो मैं चली गई। जब चली गई तो उन्होंने कहा कि अरे अरे तुम भी पीली साड़ी में हो, मैं भी पीली, देखा मुन्ने इसी बच्चे के लिए, मुन्ने खान साहब उसके साथ बजाते थे, इसी बच्चे के लिए मैं कह रही थी। बोले माशाल्लाह, तो कहा बैठो बैठो बैठो जल्दी से तानपुरा मिलाओ। तो मैंने कहा मैं तो तानपुरा नहीं मिलाना जानती हूँ, मैं तो गाती नहीं हूँ। बोला अच्छा चलो हम मिला देते हैं, बैठो चलो गाओ। तो मैंने बहुत हाथ जोड़ के कहा मैं तो गाती नहीं हूँ, आप जैसी महान कलाकार मैं आपके पीछे कैसे गा लूँ, मैं तो उर्दू ज़ुबान भी नहीं जानती हूँ, तो आप आज इस बार माफ़ करिए, कभी सीख लेंगे तो गाएंगे। बोला हाँ सही कह रही हो तुम, इस तरह से मुँह में एक शिकन नहीं, क्या कहनी इस औरत की, वो बिल्कुल गौ जैसा थी, ये बिल्कुल हिरनी थी, ऐसा खूबसूरत उनकी आंखें, बोलने अंदाज, नफासत। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, बशर्त तो मेरी यही थी कि तुम गाओगी पीछे, अब तुम नहीं गा रही हो कोई बात नहीं, ये तो खान साहब लोग सारी शाम गा लेंगे। उस प्रोग्राम में जितने बड़े बड़े ख्यालिया थे सब एक एक गजल गाना अच्छा। और आए भी थे, हाँ सब गाए थे जितने भी बड़े बड़े लोग। और इंटरवल के बाद इनका था, तो उठी फट से अपना हारमोनियम बंद, कोलैप्सिबल था हारमोनियम, बंद करी खड़ी हो गई। मुन्ने अरे इशारा नहीं समझते हो मियाँ, तबला बंद करो, नहीं गा रहे चलो निकल रहे। तो खुद एक चपरासी था उससे हारमोनियम उठवाया और धर धर धर धर धर धर, उस जमाने सप्रू हाउस दिल्ली में हुआ करता
1: जी।
0: और हमारी बदकिस्मती वहाँ एक टैक्सी भी रहा था, खड़ा था, किसी को लेके आया होगा, उसमें जाके बैठ गई। तो फिर कहा कि अरे मियाँ इधर सुनो इधर, उनको सेक्रेटरी साहब को कह देना कि मैं जा रही हूँ इन लोगों को गवा ले। तो तुम समझ में तो बहुत गड़बड़ होगी, तो मैंने उसके पैर पकड़ के कहा पाइए मैं आपके साथ दूंगी। बैठ के उन्होंने तानपुरा मिला लिया, स्टेज पे बैठते हर लाइन गाए और पीछे मुड़ के देखे ताकि मैं गाऊँ, तो मैं उनकी तरफ देखूँ ही ना, दूसरी तरफ देखूँ, तानपुरा बजा रही हूँ लेकिन दूसरी तरफ देखूँ। तो उन्होंने जल्दी से रोका और कहा कि हुसैन साहब पहचान गए होंगे, थोड़ी सी वो तो बहुत खूबसूरत थी, मेरी भी कहीं झलक आती होगी उन जैसा। तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे इस बच्ची को देख के समझ गए हैं, मेरी दुख्तर है, तो क्या गाती है माशाल्लाह, आप सुनेंगे तो आपका जी बाग बाग हो जाएगा, और ज़रा सुनिए आप कोयल जैसा कुहकती है, अभी आपको सुनवा रहे हैं हम। तो उन्होंने शुरू किया गाना

और हमने सुना भी नहीं था। तो हमारी तरफ मुंह करके, मैंने जिंदगी में उतनी खराब गाली कभी किसी के लिए नहीं सुनी। दिया की तो तेरी उस्ताद गा सकती हमारे पीछे बैठ के, ये तो गाएगी। ओहो, वो जो सुना मेरी तो सर से पैर तक जैसे बिजली गिर गई कड़ाके की, इतना गुस्सा आया। लेकिन करें क्या, आप बेगम अख्तर की आवाज, उसके पूछे आप ही नहीं बोल सकते हैं। कैसे बदला ले, नहीं ले सकते, बेवकूफी हमारी भी थी। तो बहुत देर तक बस सुनती रही, आ ओ कहीं आए, और उस वक्त गजल में रुझान भी नहीं थी, मैं इस गजल को पढ़ी भी नहीं थी, तो कहीं आ ओ आए तो बात चले।

0: तो हमने बया ये समझ लिया, पीछे बैठने से कुछ समझ में नहीं आती, तो बया को जो मैंने पकड़ा, तब तान तैयार भी होते, धर्राटे के तानवान गा के मैंने पूरा उनका प्रोग्राम बिगाड़ने की कोशिश की, और भी जम गया, इतना जम गया कि लोग ताली बजाने लगे। उन्होंने बना ही दिया था कि कोयल जैसा कोहकती, मैं क्या गाऊंगी, वो मैं तो बिगाड़ रही थी। और हर बार वो कैसे अलग अलग शेर को, अरे बाबा, वो सचमुच महान पंडित थी। वो खत्म करने के बाद उन्होंने कहा कि कैसे गाई, मैंने कहा कि मैं अपने पूरे खानदान को लानत भेजती हूँ कि आपको कभी सुना भी था, आपने कभी किसी से सीखा भी है, मेरे उस्ताद के बारे में आपने कैसे बोल दिया। बहुत मैं नाराज थी, तो उन्होंने हमको जबरदस्ती अपने सीने से लगा लिया, कहा कि बेटा कब से मैं एक शागिर्द देख रही थी, तुम बेगम अख्तर के साथ दौड़ गई अपने उस्ताद को बचाने के लिए, मेरे से सीखोगी तो पता नहीं मेरे लिए क्या करूंगी। वही वजह है कि पिछले 37 साल से उनकी बरसी में करती आ रही।
1: एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था, आपने ध्रुपद सीखा, ख्याल सीखा, ठुमरी दादरा सीखा, गजल सीखा, लोक संगीत सीखा। हमारे यहाँ संगीत में माना जाता है कि अलग अलग विधाओं के लिए अलग अलग तरह की आवाज होती है, आवाज को अलग अलग ढंग से तैयार करना पड़ता है
0: जी,
1: इसके विषय में थोड़ा सा बताएं, आपने अपनी आवाज को कैसे
0: मुझे नहीं साधा? लगता कि आवाज तय, मेरी आवाज बहुत अच्छी नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन आवाज तैयार करने की तरीका एक ही है
1: जी,
0: वो एक खास रियाज है जो कि प्रोफेशनल लोग अपने बच्चे को ही सिखाते हैं।
1: नहीं, हम ध्रुपद में जिस ढंग से आवाज
0: सब
1: लगाते हैं,
0: चाहे किसी का भी, सब की एक ही है, वो है कि खर्च की तैयारी
1: जी,
0: और वो गोल आवाज बनी है। सबसे पहली बात तो गोल आवाज, उसके लिए जिसको हम लोग अध्यात्म योग में कहते हैं कि प्राणायाम, सही माने में प्राणायाम हो तो हो जाएगा
1: जी।
0: आवाज, आवाज फेंकने का अंदाज सभी एक है, लेकिन काकू भेद अलग है
1: जी,
0: यानी वही राग है, चाहे उसमें आप ध्रुपद गाइए या ख्याल गाइए या ठुमरी गाइए। ये हम, मेरी जो पीएचडी है, शोध है, उसमें मैंने प्रमाण कर दिया है कि सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय संगीत हमारे देश में ठुमरी ही रहा, नाम कुछ और रहा, वो बदल गया वाजिद अली खान साहब के सब, लेकिन ये ठुमरी मतलब ठुमकना नहीं है
1: जी,
0: ठुमरी का मतलब है स्तंभ, स नहीं आता था इसलिए ठम हुआ, ठम के बाद वो जब वाजिद अली खान के पास आते आते री बन गया, स्तंभ की री मतलब मेरी
1: जी,
0: इस तरह से
1: जी,
0: री एक प्रकार की भाषा है जो
1: अपनेपन के लिए हम लोग प्रयोग में करते हैं,
0: तो ये ठुमरी बन गया। लेकिन सबसे पुरानी गायन प्रथा ठुमरी है। अब मेरी दुर्भाग्य में कहूंगी कि भातखंडे जी ने जितने भी छोटा ख्याल लिखा वो ठुमरी से उठा कर डाल दिया, हर राग में ठुमरी पाई जाती है। अब आप सोच लीजिए ना, आजकल प्रचलित जो ठुमरी है वो काफी भैरवी, खमाज, ये सब तो थाट राग है, तो ये हो ही नहीं सकता है कि, लेकिन बात क्या है, जैसे अम्मा कहती थी कि ये कलम करना बहुत मुश्किल बात है, अगर ना आप पूरी रागदारी समझते हैं तो एक दूसरे राग को लाके इसमें कभी कभी कलम करते हैं। ठुमरी गाना रागमारी का गाना नहीं है, अभी जो ठुमरी का चलित प्रचलन हुआ ये नहीं है, ये पूरी जिंदगी के अनुभव ठुमरी से निकलती थी, और वो हाइकू

0: होता था, एक लाइन का। ये अंतरा अंतरा बहुत बाद में सातवीं सदी में शुरू हुआ कि एक अंतरा गाना है, क्योंकि ज्यादा देर तक रहना है और लोग महफिल लंबी हो गई, अनुष्ठान मंदिर में हो गया, तो ध्रुपद के साथ इसका भी एक अस्थाई जोड़ना, अंतरा जोड़ना हो गया लाजमी। पहले वो जापान में अभी है वो कविता लिखने की, एक शब्द, कौन गली गयो शाम, बस, या सांझ भई घर आ जा, या जाग परी मैं तो पिया के जगह, वो काफी है सारी रात बरतने के लिए। वो कैसे जागा, क्यों नहीं जागा, कौन है पिया, क्यों जगाया, इसके लिए कितनी चीजें आध्यात्मिक और दैनंदिन जीवन की चीजें निकलती है। तो ये हाइकु का साहित्य और इस तरह की राग प्रणाली में गाने की, क्योंकि देखिए हम जो अगर शास्त्रीयता देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि मूर्छना
1: जी,
0: अलग सुर को सुर में लेके आप बदलते हैं, वो सिर्फ ठुमरी में पाई जाती है। जब तिरोभाव भी नहीं हुआ तो आविर्भाव की सवाल कहाँ है, किसी और विधा में तिरोभाव होता ही नहीं, आप राग से निकलते नहीं तो फिर आविर्भाव कैसे होगा। ये तमाम टर्मिनोलॉजी जो है वो सब ठुमरी में पाया जाता है। ये मध्यम ग्राम, पहले देखिए आप जितने भी साज देखेंगे दुनिया में वो सब मध्यम में ट्यून होता, पहला नोट जब मध्यम में है, आप समझे ना, इस तरह से ठुमरी की जो अंदाज थी वो पूरी चीज बदल गई, सा को टॉनिक मानने से, टॉनिक बदलने से बदल जाता है, इसी तरह से आपकी काको भेद भी बदल जाती। तो मेरी खुशकिस्मती थी, हालांकि मैं बोलती नहीं हूँ, मुझे कोई हक नहीं बोलने का क्योंकि लीगल कुछ नहीं हुआ, लेकिन अम्मी एक बार कटक में गए थे, वहाँ अमीर खान साहब भी गए थे, उनकी बड़ी लड़ाई थी उस ज़माने में, मैंने इन लोगों की दोस्ती करा दी, तो उन्होंने कहा कि खान साहब एक काम करा दो, हमारे इस बच्ची की आवाज़ ठीक करा दो। तो 20 दिन खान साहब बैठे रहे, सुबह शाम अम्मी खाना पकाती रही और बैठी, अब खुद को गाना नहीं है, इस बच्ची का तो निकला ही नहीं, आप आगे क्यों चल रहे, फिर पहले इसको करवाइए, बैठ के डंडा लिए उनसे सिखवाते थे। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि थोड़ी सी आवाज़ गोल करने का रास्ता उन्होंने बता दिया था।
1: आप बहुत अच्छी बातें कर रही हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है। एक बात जानना चाह रहा हूँ कि जब ये कहा जाता है कि ठुमरी को कई जगह छोटी चीज कहा जाता है, उपशास्त्रीय संगीत कहा जाता है, कैसा लगता है आपको, या गजल गायकी को भी बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता है?
0: ये ठुमरी गाना बहुत मुश्किल है, आप जो जो सीख के आए हैं, रियाज करते आए हैं, उसको छोड़ के आगे जाना, तो दुनिया में जो भी अच्छे काम हुए पुराने रीति रिवाज को छोड़ के आगे बढ़ना ही जिंदगी कहा जाता है। तो ये कलम करना और उसमें रस सृष्टि करना, ठुमरी में सिर्फ राग गाना, राग तो गाना ही, लय में भी गाना है, सुर में भी गाना है, लेकिन ध्येय सिर्फ राग गाना नहीं है, ध्येय है अमूर्त को मूर्त देना।
1: बिल्कुल सही,
0: ये मूर्त अगर आपके गाने से नहीं पैदा हुआ, चाहे सुर में हो, ताल में हो और ठीक हो, कोई मतलब नहीं
1: जी।
0: इसीलिए जहाँ पर भी आप जाते हैं लोग बेसब्री से, सब उस्ताद जी का, बड़े बड़े उस्तादों के आखिरी आइटम के लिए इंतजार करते हैं, वो है ठुमरी। अब ठुमरी के बदले में अब गजल आ गया है तो लग गजल भी सुनते हैं। ये अम्मी एक बार कह गई थी, किसी ने कहा था ना, मैं फला जगह गा रही हूँ, आप क्या नाम बोलो, नहीं मैं छोटी चीज से नहीं गाता, बहुत बड़े खास आप, किसी ने कहा था, तो अम्मी ने ये कहा था कि देखना बेटा वो जमाना आएगा जब जितने बड़े बड़े खानदानी गवैये हैं सबके बच्चे सब गजल गाएंगे, और बात सच निकली,
1: बात सही।
0: अब जितने भी बड़े बड़े खानदान हैं, चाहे वो जयपुर हो, पटियाला हो, ग्वालियर हो, या कोई भी अतरौली हो या जयपुर, सबके बच्चे आजकल गजल ही गा रहे।
1: आपने बेगम अख्तर जी को अभिनीत किया है मंच पर
0: जी,
1: और आपने उनकी याद में एक एकेडमी भी बनाई है
0: जी, है बाग
1: जी,
0: बेगम अख्तर एकेडमी ऑफ गजल
1: जी।
0: ये सोच के कि किसी भी बाग में मुख्तलिफ रंग की और खुशबू के फूल खिलते हैं
1: जी,
0: वो इस उम्मीद से, इसके हालांकि मैंने अकेले नहीं, मेरे साथ उस वक्त अब्बा थे, यानी कैफी आजमी साहब थे, और अली सरदार जाफरी साहब थे, अमीर गजलबाज थे, ये तमाम लोग थे। क्योंकि गज़ल आप क्लासिकल तो गा ले सकते हैं, गज़ल गाना जब तक आपकी शायरी की समझ ना हो तो चाहे बड़े बड़े गजल गवैये, अगर आप जान लें इस गजल गाने की तरकीब, तो वो अब अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि कहाँ पर सदका पड़ता है वो समझ में नहीं आती लोगों को। तो ये वजह है कि एक ज़माना था, एक दौर था, जो कि हम लोग देवनागरी और रोमन में वो इंतखाब करते थे कैफी साहब, वो हम छपवा के अच्छे अच्छे बड़े बड़े गवैयों को भेजा, ताकि वो सही तलफ़ और सही शेरों का इस्तेमाल करें। कुछ गाने आप तो गा ही नहीं सकते, आप गज़ल क्यों गाते हैं जहाँ आप सुर का एक आयाम दे सकते हैं। अल्फाज में एक जो अल्फाज हैं अपने में मुकम्मल में, उसमें गाने की ज़रूरत ही नहीं। गाना आप तभी उन्हीं इंतखाब करते हैं जिसमें मौसकी से तर्जुमा करने का इम्कानात हो,
1: बिल्कुल
0: तभी आप उसे लेना चाहिए। तो ये समझ अरसा, एक तो मेरे उस्ताद की शौहर इश्ताक अहमद अब्बासी जो नवाब थे कांकोली के, बहुत पढ़े लिखे थे और बहुत ज़हीन थे, और शेर व शायरी का उनका बहुत शौक़ था। यही वजह थी कि हमें ये, मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं 9 साल इन लोगों के साथ रही, और सवेरे जब अम्मी घूमने सैर करने निकलती थी तो अब्बा हमें बिठा लेते थे और सुनाते थे मीर तकी मीर, और फिर जामी की गज़लें फारसी, और ये तमाम चीज़ें हम उनसे सुनते थे। तो ये गज़ल पढ़ने का और किस तरह से उसका मीटर, बेगम साहब ने हमें तर्ज़े बनाने की भी तालीम दी थी। एक ज़माना था जब वो नहीं गा रही थी, कोई वजह ज़ाती वो बुज़ुर्गों को लेके कुछ खटपट हुई थी, तो बेगम साहब इसको शकील बदायनी को गाना छोड़ दिया, जिनको भी गाना वो सोना हो गया। अब तो लोग जदीद शायरी वगैरह कहते हैं जिगर को सबसे पहले बेगम अख्तर साहब ने गाया, कोई कह दे गुलशन गुलशन, तो वो उनसे अब उनको गाना ही छोड़ दिया। फिर वो शमीम जयपुरी गाने लगी, लेकिन सब शायर उनको, चाहे वो फैज़ अहमद फैज़ हो, अहमद फराज हो, या जो भी हो उस ज़माने के, सब अपना दीवान कुछ भी दो गज़लें भी लिखे तो उनको भेज देते थे कि आप अगर आपको इच्छा हो तो आप गा लीजिए, साथ कॉपीराइट देके
1: जी।
0: तो इस तरह से मेरे पास भी बहुत शकील साहब भेजते थे, 2-4 गज़लें मेरे पास थी। तो ये उस वक्त हफीज़ अहमद ख़ान साहब यहाँ के थे हेड ऑफ उर्दू सर्विस, तो नेशनल प्रोग्राम में वो आ गए, उन्होंने कहा तो मैंने एक दो शकील की चीज़ें गा दी और तर्ज हमने खुद बनाया, तो हमने उन्हें गा दी। और अम्मी कहाँ सुनेंगी, मैं तो दिल्ली में गई हूँ, वो तो लखनऊ में रहती हैं, तो अब भूल भी गई कब ब्रॉडकास्टिंग, 2-3 महीने पहले हो जाता है रिकॉर्डिंग। अचानक एक दिन अम्मी बोल रही, बेटा ज़रा रेडियो लगा ना ए पे, ए दिल्ली लगाओ ए। तो मुझे अचानक ख्याल आया कहीं मेरा सनिचर है नेशनल प्रोग्राम तो नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें मैंने ये गाया, अम्मी ने मना कर रखा था। तो मैं तो बहुत, यानी मैंने सोचा बस मेरी तो शागिर्दी गई ख़त्म, और पता नहीं क्या सज़ा मिलेगी मुझे। तो ये बात सच, हालांकि हमें ये कहना नहीं चाहिए, लीगली तो ये क़याम साहब का तर्ज है, बाद में रिकॉर्ड में।

0: और वो बजने लगा जू, पहले तो एक छोटा एक ख्याल का पीस था, उसके बाद ठुमरी था और ये गजल गाई थी। खुश हो गया, अरे वाह वाह वाह, अब मैं इसको, ये तू मुझे दे दे, ये मैं गाऊंगी। और उन्होंने गाया भी, हालांकि खयाम साहब ने उसमें चार चार लगाए। ये तो मैंने एक्चुअली, मैं चोरी भी बता देती हूँ, कहा एक रविंद्र संगीत था जिसमें अजीजे रोजो नीजा बिल्कुल यही तर्ज है, तो उसको उठा के मैंने इसमें बिल्कुल फिट बैठता है वो गाया था।
1: जी जी।
0: तो और वो इतनी खुश हुई, मैंने कहा अम्मी मैं माफी

0: चाहती हूँ कि मैंने ये गा दिया, आप नहीं गाते। तो मैं कभी, सबसे बड़ी बात हो गई थी बेटा, कभी भी नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरी नकल करो। इससे एक आर्टिफिशियल नकली हीरे के नेकलेस से तो अच्छा महज मूंगे का एक छड़ी माला बन जाओ, वो ठीक।
1: अपना रास्ता खुद बनाओ।
0: अपना रास्ता खुद।
1: एक प्रश्न मेरे मन में बार बार आ रहा है
0: जी,
1: आपने इतने

0: दस दिन में एक प्रोडक्शन करके आ गई एफटीआई। इच्छा होती काम करने की, और मैं मानती हूँ कि एक इंसान का अभिव्यक्ति एक विधा से काफी नहीं है।
1: जी विदुषी रीता गांगुली जी, आज आप हमारी महफिल में आई, आपने इस महफिल को गरिमा प्रदान किया। आज न जाने क्यों घड़ी की सुई भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, समय समाप्त होने वाला है। इस कार्यक्रम में हमारे साथी कलाकार थे तबले पर श्री प्रसून चटर्जी और हारमोनियम पर श्री जमीर अहमद खान।
0: मंजिल से उसी तरह से शिद्दत से इश्क करना जरूरी है।
1: क्या बात है,
0: मंजिल से पहुंचना। ऐ काफिले वालों सच कहना, बेवजह तो हम बदनाम नहीं, मंजिल की तमन्ना आम सही, मंजिल की तमन्ना आम सही, मंजिल से मोहब्बत आम नहीं।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
2: अभी आप विदुषी रीता गांगुली से विजय शंकर मिश्रा की बातचीत सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
3: यू जस्ट हर्ड एन इंटरव्यू विद विदुषी रीता गांगुली। टॉकिंग टू हर वॉज विजय शंकर मिश्रा। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है विदुषी सविता देवी का उपशास्त्रीय गायन. लीजिए सुनिए ठुमरी. बोल हैं सावन आए तुम नहीं आए. इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी आर प्रेजेंटिंग उपशास्त्रीय वोकल रिसाइटल बाय सविता देवी. लिसन ठुमरी. बोल सावन आए तुम नहीं आए.

अभी आप सुन रहे थे विदुषी सविता देवी से ठुमरी। आइए एक और ठुमरी, बोल हैं सैया जुल्म करे, दैट वॉज ठुमरी। लिसन वन मोर ठुमरी बाई सविता देवी, बोल सैया जुल्म करे।

0: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
1: अभी आप सुन रहे थे विदुषी सविता देवी से ठुमरी, तबले पर संगत कर रहे थे उस्ताद हिदायत खान, सारंगी पर अनंत कुंटे और हारमोनियम पर थे अरविंद चाफड़कर। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अब प्रस्तुत है विदुषी निर्मला देवी का उपशास्त्रीय गायन। लीजिए सुनिए गजल। बोल हैं मेरे जख्मिल को न छेड़िए।
0: दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।
1: दैट वाज ठुमरी बाई सविता देवी, अकंपनीड हर ऑन तबला उस्त हिदायत खान, ऑन सारंगी अनंत कुंटे एंड ऑन हारमोनियम अरविंद चाफड़कर। इन कंटिन्यूशन ऑफ प्रोग्राम वी आर प्रेजेंटिंग उपशास्त्रीय वोकल रिसाइटल बाय विदुषी निर्मला देवी। लिसन गजल। बोल मेरे जख्म दिल को न छेड़िए।

अभी आप सुन रहे थे विदुषी निर्मला देवी से गजल। अब सुनिए ठुमरी, बोल हैं जाने ना दूंगी, दैट वॉज गजल। नाउ लिसन ठुमरी बाई विदुषी निर्मला देवी।

0: ये थी ठुमरी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे विदुषी निर्मला देवी का गायन। तबले पर संगत कर रहे थे श्रीधर पाध्ये और सारंगी पर थे अनंत कुंटे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र की भेंट।
1: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
0: दैट वाज ठुमरी। विद दैट वी कंक्लूड उपशास्त्रीय वोकल रिसाइटल बाय विदुषी निर्मला देवी, अकंपनीड ऑन तबला श्रीधर पाध्ये एंड ऑन सारंगी अनंत कुंटे। दिस वॉज द कंट्रीब्यूशन ऑफ AIR मुंबई।
1: दिस रागम DTH चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए प्रस्तुत है राग जोग कौस पर ख्याल. कलाकार हैं रीता रॉय. आपके साथ तबले पर हैं आलोक मुखोपाध्याय और हारमोनियम पर है देवाशीष अधिकारी. तो लीजिए प्रस्तुत है राग जोग कौस पर ख्याल. कलाकार हैं रीता रॉय.
2: This is Ragam 24/7 on DTH anytime Indian music.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग जोग कौंस पर ख्याल सुन रहे थे। कलाकार थी रीता रॉय। आपके साथ तबले पर थे आलोक मुखोपाध्याय और हारमोनियम पर थे देवाशीष अधिकारी। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू ख्याल इन द राग जोग कौंस। आवर आर्टिस्ट दिस इवनिंग वाज रीता रॉय। Accompanying our artist on the tabla was Alok Mukhopadhyay, and on the harmonium was Devashish Adhikari. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत प्रस्तुत है अमित मुखर्जी का गाया ख्याल गायन. सबसे पहले आप कोमल ऋषभ आसावरी प्रस्तुत करेंगे. विलंबित रचना जिसके बोल है जगत का सपना झूमरा ताल पे निबद्ध है. तत्पश्चात आप तराना प्रस्तुत करेंगे जो कि तीन ताल में निबद्ध है. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं राजीव शुक्ला और हारमोनियम पर है इलियास खान.

अभी आप सुन रहे थे अमित मुखर्जी का गाया राग कोमल ऋषभ आसावरी। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का गाया राग दरबारी में विलंबित ख्याल, जो कि झपताल मिनिबद्ध है और बोल है जब सो भनक पड़ी मोरी आली। द्रुत ख्याल जिसके बोल है किन बैरन कान भरे, जो कि तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं राजीव शुक्ला और हारमोनियम पर है इलियास खां।

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे अमित मुखर्जी का गाया राग दरबारी। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।

0: This is Ragam 24/7 DTH in Classical Music Channel.
1: ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में ख्याल गायन. कलाकार हैं M.R. गौतम. राग है लाचारी तोड़ी. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल हैं एरी लंगर तुरक. द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. बोल हैं कैसे के जाऊं अपने ढिंगवा. संगत कलाकार हैं तबले पर इस्माइल द दुखां और सारंगी पर समद खां. ये रिकॉर्डिंग वर्ष 1993 में की गई थी. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी ख्याल रिसाइटल बाय M.R. गौतम. द रेंडन कमेंसेस विद द राग लाचारी तोड़ी. द अकंपनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय Ismail the Dukhan on the tabla and Samad Khan.

आप सुन रहे हैं हिंदुस्तानी ख्याल गायन, कलाकार हैं M.R. Gautam। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी ख्याल रिसाइटल बाय M.R. Gautam। ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे राग बागेश्री अंग का चंद्रकौंस। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं बीत गए दिन रैन तुमरे कारण। द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं अथक मन भायो रे। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स रामचंद्र कौंस ऑफ द बागेश्री अंग।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी ख्याल गायन। कलाकार थे M.R. गौतम। संगत कलाकार थे तबले पर इस्माइल दद्दू खां और सारंगी पर समद खां। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी ख्याल रिसाइटल बाय M.R. गौतम। द अकॉम्पनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय इस्माइल दद्दू खां ऑन द तबला एंड समद खां ऑन द सारंगी। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय All India Radio Bhopal for Ragam 24/7, an exclusive Indian classical music channel.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है मीता पंडित का गाया राग शंकरा. विलंबित ख्याल तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है. बोल हैं सो जान लिया बलम्बा और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. बोल हैं आली मोरी नीर भरन कैसे जाऊं. तबले पर आपकी संगति की है प्रसून चैटर्जी ने और सारंग पर भारत भूषण गोस्वामी ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present a vocal recital by Srimati Meeta Pandit. She first presents Rag Shankara, in which she will present Bada Khayal, set to Vilambit Tilwada Tal. The lyrics are, So Jaan Liya Alamwa. This will be followed by Chota Khayal, set to Drut Teen Tal. The lyrics of this are, Ali Mori Neer Bharan Kaisi Jaun. She is accompanied on the tabla by Shri Prasoon Chatterjee and on the sarangi by Bharat Bhushan Goswami.

0: अभी आप मीता पंडित का गाया राग शंकरा सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी प्रसून चटर्जी ने और सारंगी पर भारत भूषण गोस्वामी ने। और लीजिए अब सुनिए इनका गाया राग बसंत। मध्य लय ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल है फगवा ब्रिज देखन को चली, और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल है पिया संग खेलोरी। तबले पर आपके साथ संगति की है प्रसून चटर्जी ने और सारंगी पर भारत भूषण गोस्वामी ने।
1: यू जस्ट हर्ड राग शंकरा presented by Srimati Meeta Pandit. Continuing with her vocal recital, she will now render Raag Basant. She will first sing the Madhyam Lay Khayal, Fagwa Brij Dekhan Ko Chalri, which is set to Teen Tal. This will be followed by the Chhota Khayal, Piya Sang Khelori. The Chhota Khayal is set to Drut Teen Tal. She is accompanied on the tabla by Shri Prasoon Chatterjee and on the sarangi by Bharat Bhushan Goswami.

0: अभी आप मीता पंडित का गाया राग बसंत सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी प्रसून चैटर्जी ने और सारंगी पर भारत भूषण गोस्वामी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू हैड बीन लिस्निंग टू राग बसंत प्रेजेंटेड बाय श्रीमती मीता पंडित। And with that, we come to the end of this vocal recital by Srimati Meeta Pandit. She was accompanied on the tabla by Shri Prasoon Chatterjee and on the sarangi by Shri Bharat Bhushan Goswami. This program was a presentation of All India Radio Delhi.

0: This is Rag 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी भक्ति संगीत. हिंदुस्तानी भक्ति संगीत के तहत लीजिए अभी प्रस्तुत है भजन. गायिका है मंदिरा लाहिड़ी. तो लीजिए प्रस्तुत है भजन. कलाकार है मंदिरा लाहिड़ी.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This evening we present devotional songs. We begin the program with bhajan by our artist Mandira Lahiri. Listen now to bhajan by our artist Mandira Lahiri.

0: अभी आप हिंदुस्तानी भक्ति संगीत के तहत जन सुन रहे थे। कलाकार थी मंदिरा लाहिड़ी। हिंदुस्तानी भक्ति संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए अभी प्रस्तुत है भजन। कलाकार हैं पार्थो दास गुप्ता। तो लीजिए प्रस्तुत है भजन, गायक हैं पार्थो दास गुप्ता।
1: यू आर लिसनिंग टू भजन्स बाय आवर आर्टिस्ट मंदिरा लाहिड़ी। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनीटाइम इंडियन म्यूजिक। वी नाउ ब्रिंग यू भजन्स बाय आवर आर्टिस्ट पार्थो दास गुप्ता। लिसन नाउ टू भजन्स बाय आवर आर्टिस्ट पार्थो दास गुप्ता।

0: अभी आप भजन सुन रहे थे। कलाकार थे पार्थोदास गुप्ता। हिंदुस्तानी भक्ति संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए अभी प्रस्तुत है भजन। गायक हैं नोनी दत्ता। तो लीजिए प्रस्तुत है भजन। कलाकार हैं नोनी दत्ता।
1: यू आर लिसनिंग भजन्स बाय आवर आर्टिस्ट पार्थोदास गुप्ता। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। वी नाउ प्रेजेंट भजन्स बाय आवर आर्टिस्ट नोनी दत्तो। Listen now to bhajans by our artist Noni Dotto.

0: अभी आप हिंदुस्तानी भक्ति संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सुन रहे थे। कलाकार थे नोनी दत्ता। हिंदुस्तानी भक्ति संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए अभी प्रस्तुत है श्यामा संगीत। कलाकार हैं सोहिनी राय चौधरी। तो लीजिए प्रस्तुत है श्यामा संगीत। कलाकार हैं सोहिनी राय चौधरी।
1: You were listening to bhajans by our artist Noni Dotto. This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Continuing the program, we now bring you Shyama Sangeet. Listen to Shyama Sangeet by our artist Sohini Roy Chowdhury. You are listening to Shyama Sangeet by our artist Sohini Roy Chowdhury.